آپکی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6۔

0: और तुम्हारे लिए चार पायों में भी इबरत और निशानी है कि जो उनके पेटों में है उससे हम तुम्हें दूध पिलाते हैं, और तुम्हारे लिए उनमें और भी बहुत से फायदे हैं, और बाज को तुम खाते भी हो।
1: وعليها وعلى الفلك تحملون
0: और उन पर और कश्तियों पर तुम सवार होते हो।
1: ولقد

ताकि मैं उसमें जिसे छोड़ आया हूं नेक काम किया करूं। हरगिज नहीं, ये एक ऐसी बात है कि वो उसे जबान से कह रहा होगा और उसके साथ अमल नहीं होगा, और उनके पीछे बरजख है जहां वो उस दिन तक के दोबारा उठाए जाएंगे रहेंगे।

0: फिर जब सूर फूंका जाएगा तो न तो उनमें कराबतें रहेंगी और न एक दूसरे को पूछेंगे।
1: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: तो जिनके अमलों के बोझ भारी होंगे वो फलाह पाने वाले हैं।
1: وَمَنْ خَفَّ

और जब तुमने उसे सुना था तो क्यों न कह दिया कि हमें शायन नहीं कि ऐसी बात जबान पर लाएं। परवरदिगार तू पाक है, ये तो बहुत बड़ा बोहतान है।

मोमिनों, अपने घरों के सिवा दूसरे लोगों के घरों में घर वालों से इजाजत लिए और उनको सलाम किए बगैर दाखिल न हुआ करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। और हम ये नसीहत इसलिए करते हैं कि शायद तुम याद रखो।

अगर तुम घर में किसी को मौजूद न पाओ तो जब तक तुमको इजाजत न दी जाए उसमें मत दाखिल हो, और अगर यह कहा जाए कि इस वक्त लौट जाओ तो लौट जाया करो। ये तुम्हारे लिए बड़ी पाकीजगी की बात है, और जो काम तुम करते हो खुदा सब जानता है।

0: वो कहेंगे तू पाक है, हमें ये बात शायन न थी कि तेरे सिवा औरों को दोस्त बनाते, लेकिन तूने ही उनको और उनके बाप दादा को बरतने को नेमतें दी, यहाँ तक कि वो तेरी याद को भूल गए और ये हलाक होने वाले लोग थे।
1: فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا

दोपत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

FM 92.6. Number one radio station, FM 92.6, UCP ki duniya.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
3: ایک نیا انداز ایک نئی
4: سوچ
3: एक नई पहचान
4: एक नई लगन
3: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
4: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से
3: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
4: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन
3: जब मिलती है लगन
4: मेहनत
3: कामयाबी और खुलूस
4: तो बनती है
3: यूसीपी की दुनिया
4: आप सुन रहे हैं FM 92.6
3: सुनते रहिए
5: Assalamu alaikum. My name is Amna Naeem and I'm lecturer in the Faculty of Languages and Literature, UCP. I would like to first introduce the idea that we launched this initiative of Reading Circle and it was launched by Faculty of Languages and Literature in 2022 to rekindle the art of reading and to put an emphasis into this habit. I would like to now switch to Ms. Zarmina to introduce the book that why we have selected this particular book and then we'll move on to our discussion.
6: Assalamu alaikum. Thank you so much, Amna. We have selected this book for this particular reason that in the 21st century, the first and the most important thing is our mental health, our spiritual health, and physical health as well. So this book is basically a classic in the realm of that idea, and it is very essential that if you want to learn personal development, leadership skills, and if you're looking for effective self-growth and self-mastery, and you want to flourish in your leaderships and relationships, this book, Seven Habits of Highly Effective People, is one of the best books. And this book has been sold for 40 million copies have been sold, and it is one of the best sellers. And the best part about this book is that this book has been translated into 40 languages. So obviously, when we have such wide readership, so we really understand that why is it so important to read such a book, which can provide you not just, a personal, help as well. And you can get interpersonal relationships and help in that as well. And my first question to Dr. Muhammad Tayyab is that do you think that a book can change anybody's life? Or especially the perspective of looking at life as well.
7: थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका पहला सवाल है कि बुक कैन चेंज आवर लाइफ और नॉट, इसका जवाब है एब्सोल्यूटली यस. अगर बुक आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकती तो इल्हामी किताबें क्यों आती हैं? अगर बुक चेंज नहीं कर सकती तो फलसफे और थीरी और नॉलेज और ये सब क्यों आता है? तो हमें यह समझना होगा कि अच्छा, अगर हम चेंज नहीं हो सकते तो फिर हमारा हिसाब किताब क्यों होगा? अगर हम चेंज नहीं हो सकते तो हमारी हरकतों का अजाब हमें क्यों होगा? अगर हमारी नेचर में कस्टमाइजेबल फीचर नहीं है, या हमें ट्रेन नहीं किया जा सकता, या हमें एजुकेट नहीं किया जा सकता, या हमें सिविलाइज नहीं किया जा सकता, तो फिर कसूर हमारा कैसे हुआ? सपोज हम थे ही ऐसे तो हमने ऐसी हरकत कर दी, तो देन व्हाई आर वी रिस्पॉन्सिबल? तो अगर ये आइडिया डिनाई कर दिया गया कि किताब हमें चेंज नहीं कर सकती, और यानी किताब का क्या मतलब है, किताब का नॉलेज, तो अगर इल्म हमें चेंज नहीं कर सकता और जानवर भी इंस्टिंक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, तो फिर हमारे में फर्क क्या हुआ? तो किताब जो है, जो नॉलेज है, वो इंसान के शऊर में जब तहलील होता है तो उसका सारा कुछ चेंज हो जाता है. और हाँ, ये बात जरूर हो सकती है कि इस बुक का क्या इफेक्ट है, कि इस बुक को पढ़ने से क्या होगा, बट इस बेसिक आइडिया को आप डिनाई नहीं कर सकते कि किताब पढ़ने से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता. ये सोच रुकावट हो सकती है कि किताब पढ़ने से लाइफ नहीं चेंज हो सकती, बट ये किताब का कसूर नहीं हो सकता. वो लोग जो अलाउ नहीं करते अपने आप को चेंज, क्योंकि चेंज अनकंफर्टेबल आइडिया है, आप इवन अपने दुखों के साथ बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, एडिक्टिव हो जाते हैं। तो किताब जैसे ही उसको हिलाती है और सोच, आपकी सोच को सवाल किया जाता है, इट इज वेरी अनकंफर्टेबल टू फेस द ट्रूथ। तो आपके बारे में भी कुछ सच होते हैं जो आपने खुद भी खुद को नहीं बताए होते। तो किताब जब उन सच्चाइयों को खोलती है तो इंसान अनकंफर्टेबल होता है, बिखरता है, टूटता है और वो दौड़ता है अपनी अना के बुद्ध की तरफ। तो वो रेजिस्ट करता है आइडिया ऑफ रीडिंग द बुक। अदरवाइज कोई भी बड़ा दिमाग और कोई भी ओपन माइंडेड इंसान और कोई भी खुले दिल से देखने वाला इंसान और कोई भी नई पॉसिबिलिटी पे यकीन और ईमान रखने वाला आदमी इस ऑप्शन को डिनाई नहीं करेगा, बिकॉज इंसान इन्फ्लुएंस करता भी है और उसे किया भी जा सकता है, क्योंकि सिविलाइजेशन की विजडम उसके अंदर है। किताब को ये एक बंदा अपने वहम तो नहीं लिख रहा ना। अब ये जिस तरह ये किताब है, इसके पीछे रिसर्च खड़ी है, साइकोलॉजी की रिसर्च खड़ी है, परसुएशन की रिसर्च खड़ी है, सेल्फ हेल्प का योनरा खड़ा है, उसकी ऑब्जर्वेशन है, उसका उम्र का तजुर्बा है। अब किताब से इस्तफादा भी ना करना, किताब अच्छा, वो ये वो बंदे कह रहे हैं किताब से, किताब को पढ़ने से कुछ नहीं होता, उम्र भर सिलेबस के अलावा किताब पढ़ी भी कोई नहीं होगी। तो ये बड़ी एक अजीब बात है कि जब तुम किसी बड़ी बुक से आशना नहीं हुए और किसी गहराई में उतरे नहीं हो और तुम उसकी गहराई को मानने से इनकार कर रहे हो, ये ऐसे ही है कि साहिल पे खड़े होकर समुद्रों की बातें करना। तो फिर किताब पढ़े बगैर किताब पे राय देना किताब की भी तोहीन है।
5: सर, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि जनरली हम आजकल देख रहे हैं कि देयर इज अ कोलैप्स ऑफ रिलेशनशिप्स हैपनिंग इन एवरी रियलम, बी इट प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ। शादियां भी बहुत टूट रही हैं, तलाक हो रही है, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, और साथ ही हमारे यहाँ प्रोफेशनल लेवल पे तो वैसे ही लोग बहुत ज्यादा इस बारे में बात करते हैं कि जी आप रिलेशनशिप्स नहीं बना सकते, दोस्तियां नहीं बना सकते। तो ये बुक इस बात को बहुत अच्छे से एड्रेस करती है कि आपको पर्सनल और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, प्राइवेट रिलेशनशिप्स और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे बिल्ड करते हैं और फिर कैसे स्ट्रेंथन करते हैं। तो उसके बारे में सबसे पहली वो एक बात करता है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव अप्रोचेस को। तो मैं चाहूंगी कि आप उस पर प्लीज रोशनी डालें कि
7: इस किताब का जो सबसे पहला फायदा इंसान को होता है ना, वो एक रिएक्टिव बंदा होना छोड़ देता है और वो प्रोएक्टिव हो जाता है। अब ये दो बंदे कौन हैं? ये दो ज़हनियत हैं, ये दो पर्सपेक्टिव हैं अबाउट लाइफ, ये दो पैराडाइम हैं जिनको बंदा लेके चलता है। कैसे? प्रोएक्टिव बंदा हर स्टिमुलस को रिस्पॉन्स नहीं करेगा, हर एरे गहरे की बात का जवाब दिया जा सकता है, हर क्रिटिसिज्म गले लगाया जा सकता है, हर ए बी सी डी के उसको किया जा सकता है। प्रोएक्टिव बंदा कौन होता है? जो स्टिमुलस को रिएक्ट नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। रिस्पॉन्स और रिएक्ट में क्या फर्क होता है? रिस्पॉन्ड एक कॉन्शियस डिसीजन है, यानी आपने स्टिमुलस भेजा, इसको पर्सनल इशू बनाए बगैर एज ए ऑब्जर्वर और एज ए कॉन्शियस इंसान आप उसको एनालाइज जो है वो करते हैं कि इसको रिस्पॉन्ड करना भी है कि नहीं, कब करना है, करने की जरूरत है, अगला डिजर्व करता है, अगला इस काबिल है, अगला इसको समझ सकता है, ये उसके लिए क्या नतीजे लाएगा, ये कर सकता है कॉन्शियस इंसान जो रिफ्लेक्टिव मोड में होता है। रिएक्टिव आदमी इंपल्सिव मोड में होता है, वो जानवर की तरह होता है। हाँ, आप पत्थर मारे वो टांग मारेगा। तो रिएक्टिव बंदा जो है ये सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करता नजर आएगा, रिएक्टिव बंदा अगले को पड़ जाएगा, रिएक्टिव बंदा आपके गले पड़ जाएगा, रिएक्टिव बंदा जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगा, रिएक्टिव बंदा कहेगा चूंकि बाकी सारों ने ऐसा किया था तो इसलिए ऐसा हुआ। प्रोएक्टिव आदमी के ना फीचर याद रखें, प्रोएक्टिव आदमी को आप शादी में ले जाएं, जॉब में, जहां मर्जी ले जाएं, उसकी एक क्वालिटी होगी, वो जिम्मेदारी ऑन करेगा, अपने हालात की भी, अपने हैप्पीनेस की भी, अपने इमोशनल हर चीज की, ट्रॉमा की भी, चबल सिटी की भी, रेगुलेशन, वो जिम्मेदारी ऑन करेगा। फिर अच्छा, फिर दूसरी बड़ी क्वालिटी प्रोएक्टिव बंदे की, वो इनिशिएटिव लेगा। वो ये नहीं कहेगा मुझे किसी ने कहा ही नहीं था, आप मुझे कहते तो मैं कर देता, मैं क्यों करूं, ये मेरे साथ बुरा, ये जो होते हैं ना ब्लेम जो करते रहते हैं, मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, विक्टिम प्ले करना। रिएक्टिव बंदा विक्टिम या विक्टिम की तरफ खड़ा हो जाएगा, मतलब वो किसी प्रॉब्लम में खड़ा हो। प्रोएक्टिव बंदा जिम्मेदारी लेगा और प्रोएक्टिव बंदा इनिशिएटिव लेगा और प्रोएक्टिव बंदा देखेगा मैं क्या कर सकता हूँ। उसके जो फोकस की ओरिएंटेशन होगी वो इस बात पे होगी व्हाट कैन बी डन, न के व्हाट हैज बीन डन टू मी। सारी जिंदगी इस बात को रोते रहना मेरे साथ बुरा क्या हुआ, तो आप वो क्यों नहीं कर डालते जो आपके इख्तियार में, और इख्तियार में बहुत सारी चीजें हुआ करती हैं।
6: दिस लीड्स टू द अदर क्वेश्चन दैट जब हम ये सारी सिचुएशन देखते हैं तो हमारे जहन में एक सवाल आता है दैट व्हाट इज अर्जेंट एंड व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। और ये बुक सबसे ज्यादा इस चीज को एड्रेस करती है, एंड द टर्म दैट इज यूज्ड इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड द सर्कल ऑफ कंसर्न। तो हाउ डू यू थिंक दैट दिस कैन बी वेरी मच बी रिलेटेड टू आवर लाइव्स एज वेल।
7: मैंने थेरेपी सेशन में भी बैठता हूँ बतौर साइकोलॉजिस्ट, वो बंदे चेंज नहीं हुए जिनका फोकस इन चीजों पे था जो उनके कंट्रोल में नहीं है। मसलन मेरा हस्बैंड मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव करता है? तुम्हारे कंट्रोल में अपना बिहेवियर है कि उसका बिहेवियर है? तुम्हारे कंट्रोल में अपना रिस्पांस है कि उसका रिस्पांस है? मेरे पापा ने मेरे साथ छोटे होते ऐसे क्यों किया था? अब पापा है नहीं, पापा भी चले गए, अब इस बात का रोना क्यों रो रहे हो? अब मैंने उनसे घंटों बात करके देखी, वो सर्कल ऑफ कंसर्न पे फोकस करते हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न क्या होता है? जो उन्हें चाहिए, जैसा उन्हें चाहिए था, जो उनके इख्तियार में ही नहीं। सर्कल ऑफ
5: ने आपको कहीं ना कहीं सेंटर पे रखा हुआ है,
7: वो बस उस बात पे फोकस जो कर रहे हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है बट उन्हें चाहिए। लेकिन जो उनके कंट्रोल में है वो करते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखें, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या होता है? मैं अपनी सोच चेंज कर सकता हूँ, मैं अपना रिस्पांस चेंज कर सकता हूँ, मैं अपने ख्यालात चेंज कर सकता हूँ, मैं अपनी नॉलेज बढ़ा सकता हूँ, मैं अपना रवैया चेंज कर सकता हूँ, मैं उसके रवैये पे खामोशी इख्तियार कर सकता हूँ, उसको नहीं बांध सकता। मैं उसकी बातों को दिल पे लेना छोड़ सकता हूँ, उसकी बातों को नहीं खत्म करा सकता। हम कहते हैं कोई मुझे ऐसा ना बोले, अब मैं सारी दुनिया के बच्चे बांध आऊं कहीं पे? ऐसा नहीं हो सकता। आप ये लर्न करते हैं कि पानी में रहते हुए कश्ती को पानी से बचाना है। वो कश्ती पानी में चल रही होती है, पानी को अंदर नहीं जाने देती। डैमेज वो होता है जो बाहर की बातों को गले से लगा। तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस करने का मतलब है अपने करने के काम जो किए जा सकते हैं अपनी एनर्जी उधर डायरेक्ट करें। हमने एनर्जी, अच्छा मैं इस बात को यूं समझाता हूँ, रिजल्ट्स आपके कंट्रोल में नहीं होते। आप कहते हैं कि अगला मुझे वैसे चाहे जैसे मैं चाहता हूँ, ये नहीं हो सकता। आप क्या कर सकते हैं? आप उसकी केयर कर सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं, उसका हाल पूछ सकते हैं, उसके साथ अच्छे हो सकते हैं, उसकी पसंद कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जब हम कंट्रोल करना चाहते हैं दूसरे के रवैये को तो हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। खुद को एडजस्ट किया जाता है, अगले को बाउंड नहीं किया जाता, और दूसरे को चेंज करने की ख्वाहिश खुद को तोड़ देती है इंस्टेड के खुद को चेंज करें।
5: नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ गो फॉर अ म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं, फिर अपने डिस्कशन को आगे जारी करते हैं।

0: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। हम आप यहाँ से अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। हम बात कर रहे थे प्रोएक्टिव और रिएक्टिव अप्रोचेस की। सर, आपने कंपैरिजन तो किया है कि प्रोएक्टिव बंदा कैसा होता है, रिएक्टिव बंदा कैसा होता है, लेकिन प्रोएक्टिव अप्रोच जो कि दुरुस्त सिमत है, उसको कैसे बिल्ड करना चाहिए हर इंसान को?
2: देखें, आप स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की शक्ल में इस प्रोसीजर को पहले समझें। उसने जो मेरे बारे में कहा, लेट्स से, ये स्टिमुलस है। अब आर कवि कहते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान आप खुद किधर थे। मसलन उसने गाली दी, आपने भी दे दी, तो इसका मतलब है कि आपके रिस्पांस और उसके स्टिमुलस के दरमियान आप थे ही नहीं। पहली चीज है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं फलाऊं फलाऊं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी थॉट्स की अवेयरनेस। एक सोच जो आने लगी थी उसको ऑब्जर्व क्यों नहीं किया आपने? वाइट आपको तो 6-7 ख्याल आए, एक आपने चूज क्यों किया? वो सिलेक्शन बाय चॉइस होनी चाहिए। हाँ, वो कॉन्शियस चॉइस है कि मैं यहाँ बोलूंगा या नहीं। फिर इंटरप्रिटेशन आपकी चॉइस है, आप उसकी बात को और तरह इंटरप्रेट करें, आप और तरह फील करेंगे। आप उसको यूं इंटरप्रेट करें कि ये उसकी सोच है मेरे बारे में, इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो असर ही कोई नहीं होगा। तो पहली चीज है सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशन की, अपनी थॉट की, अपनी एनर्जी की, और दूसरे के भी थॉट, इमोशन और एनर्जी की। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी ने आपके तनकीद की, वो बंदे जिनके इमोशन डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये रिएक्टिव बंदे हैं। जो कॉन्शियस बैठे होंगे वो उस तनकीद को बच्चे, फॉर एग्जाम्पल आप टीचर हैं और एक बच्चे को लगता है कि मुझे तो आपका एक लफ्ज भी समझ नहीं आता। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट, अपने ओवरऑल फीडबैक को आप जानती हैं, अपने कैलिबर को जानते हैं, अपनी नॉलेज की अवेयरनेस है, और इस पॉसिबिलिटी को भी जानती हैं कि बच्चा डिस्टर्ब होगा, बच्चा नहीं सुन रहा होगा, मैं उसकी सतह पे ना आ सकी होंगी। तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, यू रिफ्लेक्ट अबाउट यूअर मेथोडोलॉजी एंड अबाउट हिज कॉमेंट, और उस वक्त आप कोई रिस्पांस नहीं करेंगी, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगी कि ये जो कह रहा है ये ठीक है कि नहीं है। तो आप रिएक्टिव,
1: स्टेट ऑफ माइंड क्या है,
2: यानी कि आप रिएक्टिव नहीं हुए, रिफ्लेक्टिव हुए। रिफ्लेक्टिव मूवमेंट में रियलिटी खुलती है, रिएक्टिव होते हुए अकल हाईजैक हो जाती है, आप गले पड़ जाते हैं। फिर जब सेल्फ अवेयरनेस होगी तो रिफ्लेक्शन का अमल इनेबल होगा, अदरवाइज तो आप जवाब देने पे तुल आएंगे और उसको कॉन्फ्लिक्ट इनवाइट की तरफ ले जाएंगे। फिर इसमें एक विल होती है, यानी सेल्फ अवेयरनेस के बाद आपकी विल है, यू चूज समथिंग। और मैं इसमें लास्ट बात आपको बताऊं, जिससे हम प्रोएक्टिविटी एनेबल करते हैं, फ्रीडम टू चूज द रिस्पॉन्स हमेशा आपके पास होती है। उसका बिहेवियर आप कंट्रोल नहीं कर रहे, उसको रिस्पॉन्ड आप कर रहे हैं। आपको बॉस ने बुला के 4 बातें सुनाई है, रिस्पॉन्स ये तय करेगा कि वो बातें किस तरफ जाएंगी।
1: True.
2: उसकी बातें नहीं आपको मसला कर रही, उसकी बातों को फिर रिस्पॉन्ड कैसे किया? उसने आपकी गलतियां बताई, आप रिएक्टिव हो गए। तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप गलतियों को जायजा लें, जो जेन्युइन है उन पे माजरत करें, जो दूसरी हैं उसके बारे में भी कुछ बताएं और एतमाद जीत लें?
1: और अक्सर उस हीट ऑफ द मोमेंट में आपका दिमाग उस तरह चल भी नहीं रहा।
2: अगर आप रिएक्टिव होंगे तो आप उन्हें गले पड़ जाएंगे, अगर आप रिफ्लेक्टिव होंगे तो आप उस क्रिटिसिज्म को अपॉर्चुनिटी लेंगे, रिलेशनशिप बिल्ड कर लेंगे उस बंदे के साथ। उसने बुलाया था बेइज्जती करने, वापसी पे आप उसका दिल जीत के आ गए, तो आप बताएं फिर। पर ये एनेबल नहीं हो सकता कॉन्शियस, रिफ्लेक्टिव और प्रोएक्टिव हुए बगैर।
3: इससे एक अगला सवाल जो जनरेट होता है, जो बुक में बहुत ज्यादा वजाहत की गई है इस बात पे, वो ये है कि आप जब भी कोई चीज या आइडिया शुरू करें, यू शुड ऑलवेज बिगिन विद दिस थिंग दैट यू शुड हैव द एंड इन योर माइंड। तो उस पे क्या इसका रिफ्लेक्शन होता है आपकी पर्सनल रिलेशनशिप पे और प्रोफेशनल रिलेशनशिप पे, उसको आप इस किताब के साथ किस तरह रिलेट कर सकते हैं?
2: जर्मीना, देखें, मकसद के तयन के बगैर रस्तों का इंतखाब नहीं हो सकता। अब इस बात पे गौर करें ना कि मैं बाजार जा रहा हूँ, मुझे ये ही नहीं पता मैं क्या लेने जा रहा हूँ, तो मैं किस दुकान से क्या लूंगा, मुंतशिर हो जाऊंगा। और अगर पता है मैं दही लेने जा रहा हूँ तो क्या होगा, मेरे रस्ते भी तयन भी हो जाएगा, दुकान का डिसीजन भी हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो बिगिन विद एंड इन माइंड क्या है कि आप इख्तिताम को जहन में रख के आगाज को तय करें, मतलब आप क्या क्यों कर रहे हैं।
3: You should know your destination,
2: yes,
3: especially when you're walking.
2: Yeah. अब देखें, ये आप इसको यूं समझें, वाई के जवाब के बगैर हाउ का जवाब मुमकिन नहीं है।
3: ट्रू,
2: यानी कि मैं क्या क्यों कर रहा हूँ के जवाब के बगैर میں یہ کیسے کروں گا کا جواب درست نہیں ہوگا. جب آپ اینڈ ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اینڈ ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے. کچھ آدمیوں نے زندگی سے آگے کیریئر رکھ دیا ہے تو انہوں نے اینڈ جو ہے غلط ڈیفائن کیا ہے. مثلاً سکسیس کو جب ڈیفائن کرنے لگے ان سے ترتیب میں غلطی ہوگی.
3: اور اس بک میں وہ یہ بھی بات کرتا ہے کہ آپ کو اپنی پرائیورٹیز کا بھی پتا ہونا چاہیے.
2: دیکھیں جو آدمی بھی اسپرچل ہیلتھ قربان کر کے میٹیریل ہیلتھ کو پائے گا وہ خسارے میں ہے. آپ فزیکل ہیلتھ قربان کر کے چار پیسے کما بھی لیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا.
3: ٹرو.
2: تو آپ جب اصل میں جس کلچر میں آپ رہتے ہیں نا یہ پرائیورٹی خراب کر دیتا ہے. یہ آپ کو سوچوانے
3: کیپٹلزم یہی کر رہا ہے.
2: یہ آپ کو یہ یقین دلا دیتا ہے اگر تم نے پیسے نہ کمائے تو تم رول جاؤ گے. یہ آپ کو انسیکیور بنا دیتا ہے. یہ آپ کو تھریٹن کرتا رہتا ہے کہ ابھی تم گئے ابھی تم گئے ابھی تم گئے. تو اگنور کیا ہوا آپ کا پیس آف مائنڈ. اگنور کیا ہوا آپ کی اسپرچل ہیلتھ.
3: آپ کانسٹنٹ سٹرگل میں اور لوپ میں چلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ
2: کا کارپوریٹ سیکٹر اتنا تھریٹننگ ہے کہ آپ روز ناشتے کے بغیر ڈیڈ لائن میٹ کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ اپنی فزیکل ہیلتھ بیچ رہے ہیں. اب جب آپ بیچ یعنی اتنی قیمتی چیز اتنے سستے میں بیچ رہے ہیں تو حماقت ہو رہی ہے. تو جب آپ ریفلیکٹو موڈ میں کبھی گئے ہی نہیں, سیلف اویئرنیس پہ آئی نہیں, پرو ایکٹیو ہونے کی کوشش ہی نہیں کی, ڈیڈ لائنز کو ریئیکٹ کرتے رہے ہیں ہر وقت, تو آپ کبھی بھی پرائیورٹی سیٹ نہیں کر سکتے. اس کا تھرڈ چیپٹر میں وہ کہتا ہے پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ. مثال کے طور پہ امپورٹنٹ کاموں کو چھوڑ کے ہر وقت ارجنٹ کام کر رہے ہیں تو ایک دن پتہ چلے گا لیور فیل ہو گیا بیکاز ادھر دھیان نہیں دیا. کب کا پتہ چل گیا تھا کڈنی میں سٹون آ گئی ہے پر کیریئر کی نظر ہوئے ہوئے تھے چونکہ آبسیشن بنا لیا.

0: हम फिर किस तरह अपनी जिंदगी में भी अप्लाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल हेल्थ एज वेल?
1: अच्छा देखें, स्पिरिचुअल हेल्थ में भी देख लें कि कायनात आपको बहुत कुछ कह रही होती है। कायनात का सिखाने का तरीका पेन है, पेन को सुनना आना चाहिए, चैलेंज को सुनना आना, क्रिटिसिज्म को सुनना आना। लाइफ में डिफिकल्टी ना हो तो ग्रोथ ही नहीं होती।
2: ट्रू ट्रू, आपने कंफर्ट जोन से
0: बाहर ही नहीं आ रहे।
1: कोई आदमी भी उस मोनोटनी को नहीं तोड़ता, उस कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ता जब तक उसे कोई चीज वहां तंग ना करे। और वो कुदरत का सिखाने का तरीका है। चूंकि हमने पेन को मजलूम बनने के लिए इस्तेमाल किया है, पेन को ग्रोथ के लिए इस्तेमाल नहीं किया।
0: ट्रू,
1: हमें पेन को पर्सपेक्टिव देना नहीं आया। वही पेन मेरा ईंधन बन सकता, यानी वो पत्थर जो उसने मारे थे वो मैं तमीर में भी इस्तेमाल कर सकता था ना। मैं उन्हीं का रोना वुंड लेके बैठा रहा। एक बात तो ये है। दूसरी बात, जब आप कहती है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, हमारे में ना समझे जाने की तमन्ना, यानी कि मुझे कोई समझे, कोई मेरा हो, कोई मुझे समझे, मतलब कुदरत से भी हम ये डिमांड कर रहे हैं कि वो मेरी विशेज क्यों नहीं एड्रेस करता, वो मुझे क्यों नहीं दे देता, वो तुम्हें क्यों दे, मतलब वो तुम्हें ही क्यों दे, कौन लगे हुए हो? चूंकि अपना, चूंकि हमारे बारे में जो अपना हमारा इमेज है वो भी खराब है, और कायनात के साथ भी हमारी कोरेस्पोंडेंस नहीं है। तो सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड का मतलब होता है पहले ये क्लूज आप समझेंगे, इस कायनात के साथ जब आप ट्यून होंगे तो वो सारा कुछ है जो आपको चाहिए, यानी कायनात के पास तो सब कुछ है, आप वो क्यों नहीं दे रही? आपको ट्यून होना नहीं आ रहा, आप रेजिस्ट करते हैं, आपने इगोइक स्टांस ले लिया है, आप कायनात की एनर्जीज को सरेंडर करने को तैयार नहीं है। तो सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड का मतलब है कि पहले आप समझेंगे, यानी समझे जाने की तमन्ना समझाने से ज्यादा होनी चाहिए, यानी वो मुझे समझे, वो मेरी बात को समझे की बजाय मैं उसको समझूं। अच्छा, इसके लिए आपका लिसनर होना जरूरी है। और लिसनर नॉन जजमेंटल, जो फतवे लगाने के लिए ना सुने, रिएक्शन देने के लिए ना सुने, वो सुनते हुए कीड़े ना निकाल रहा हो, वो फॉल्ट फाइंडिंग ना कर रहा हो, वो आपको शक की नजरों से ना देख रहा हो, वो हर वक्त क्रिटिकल लेंस में ना बैठा हो, तो फिर कैसे समझे? विद अ डिजायर टू अंडरस्टैंड। आप किसी भी आदमी को जब विद अ डिजायर टू अंडरस्टैंड समझेंगे तो आपको एक सवाल के जवाब मिलेगा, वो जैसा है वो वैसा क्यों है? और जब आपको ये समझ आएगी आप उस पर गुस्सा नहीं आएगा, हमदर्दी पैदा हो जाएगी।
0: इससे क्या ये बात ये नहीं आती कि पेरेंटिंग का इस पे बहुत बड़ा रोल होता है? लाइक फॉर एग्जांपल, हम हमेशा ये देखते हैं कि हमारा बच्चा, ये बुक में भी बात हुई हुई है और जनरली बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है देखने वाली, कि ये बच्चा ये रिएक्शन क्यों कर रहा है। हम हमेशा उस रिएक्शन को देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि इस रिएक्शन के पीछे क्या एक्शंस हो रहे थे जिसकी वजह से ये रिएक्शन आया है बच्चे में।
1: छोटे बच्चे का जो एंगर है ना वो नॉर्मल नहीं है, उसे एंगर आता है आपकी किसी हरकत की वजह से, उसे एंगर आता है जब उसकी इमोशनल नीड एड्रेस नहीं होती, उसे एंगर आता है या डाइट डेफिशिएंसी होगी या लव डेफिशिएंसी होगी। सात साल की उम्र तक अगर आप अपने बच्चे में इरिटेशन देखते हैं, अनोयंस देखते हैं, एंगर देखते हैं, रिजेंटमेंट देखते हैं, उसे गले लगाएं, छोड़ दें लेक्चर अपना, वो आपके लेक्चर से नहीं सीखता, वो आप उसको सुनना शुरू करें, वो थेरापियूटिक होता है। आप उसको सुनना शुरू करें, वो हील होने लग जाएगा
0: जी।
1: आप उसे समझने लगेंगे, वो हील हो जाएगा
0: जी।
1: उसे एंगर खुद से डील करना नहीं आता, वो बड़ा नहीं है कि इमोशन को रेगुलेट कर लेगा। वो आपने उसको ऐसा डेडलाइन दी है, ऐसा थ्रेट दिया है, ऐसी बात कही है, वो डिस्टर्ब है
2: जी।
1: फिर आप उसे कहते हैं
2: प्रोएक्टिव रहना है और फिर सोच समझ के।
1: अगर आप एज ए अम्मी रिएक्टिव हुए तो बच्चा आपका बड़े होकर रिएक्टिव होगा, भले लेक्चर आप उसे प्रोएक्टिव का देते रहे, क्योंकि बच्चा इमोशन डाउनलोड कर लेता है। आप खुद हर वक्त अर्जेंसी सिंड्रोम में रहते हैं, जल्दी करो लेट हो रही है, ये जल्दी उसको लग जाएगी। आप खुद हर एक को बज जाते हैं, ये बजना उसको लग जाएगा। आप खुद एंग्जाइटी से लड़ रहे हैं और बच्चे को एंग्जाइटी से बचाना चाहते हैं। बच्चा वो नहीं सीखता जो आप लेक्चर फरमाते हैं, बच्चा वो बनता है जो आप होते हैं। या आपका एंटी बनेगा या आपकी कॉपी बनेगा। कैसे? अगर आप उसके पसंदीदा बन गए तो आपकी कॉपी बन जाएगा। अगर आपने उसको बेजार कर दिया तो वो आपकी बगावत में, आप मस्जिद जाते थे, वो मस्जिद के करीब से गुजरना पसंद नहीं करेगा। तो अगर आप जब आप उसके पसंदीदा आदमी नहीं होते और आप उसे कहते हैं सिगरेट छोड़ दो, वो आपको छोड़ देता है। जब आप उसके पसंदीदा आदमी नहीं होते तो आप उसे कहते हैं उस दोस्त से ना मिलना, तो वो आपको बताना छोड़ देता है। तो ये फिर अम्मी अबू होना बड़ा प्रोजेक्ट है और उसकी सर्टिफिकेशन लेते नहीं है और अबू बन जाते हैं।
2: Now we are also again going for a musical break and then we'll continue with our discussion after we come back.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: we are here. We are UCP Ki Duniya FM 92.6.
1: Fasten your seatbelt.

0: 92.6.
1: Sufi sings Ruhu, that which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
3: एक नई सोच,
4: नई सोच,
5: एक नई पहचान,
4: पहचान,
3: एक नई लगन,
4: नई लगन।
5: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
5: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
5: जब मिलती है लगन,
3: मेहनत,
5: कामयाबी और खुलूस,
3: तो बनती है
5: यूसीपी की दुनिया।
4: यूसीपी की दुनिया।
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
5: सुनते रहिए।

दोबारा वापस आते हैं प्रोग्राम की तरफ। उम्मीद है आपकी दिलचस्पी बरकरार रही होगी, अगर नहीं है तो आगे मजीद आपकी दिलचस्पी का सामान मेरे पास है। लिहाजा जनाब, जो सबसे पहला कानून कायदा कुलिया रूल तय हुआ वो ये था कि जी जब करीब आएंगे दोनों पहलवान, पहलवानी थे दोनों में कुश्ती का मुकाबला था, एक बात करनी है। मैं बता रहा हूँ ना कि जो हमारे पहलवान जी थे दुकानदार और पहलवान जी हाई एंड हाई तय वही कर रहे थे, वो दूसरा जो था मुकाबिल उनका दोस्त कद में भी कम जिसामत में भी कम, लेकिन इत्माद ऐसे था कि लगता है कि वो इंतजार कर रहे कि कब मुकाबला शुरू हो। मैं देखने वालों को बताऊं कि मेरे में कितनी फुर्ती है। जनाब पहलवान जी ने पहला कुलिया का ऐलान किया कि जनाब जब करीब आएंगे, जब जोड़ पड़ेगा हाथों में हाथ आएंगे, ज्यादा जोर से नहीं खींचना हाथों को, ख्याल करना है ज्यादा जोर से हाथों को नहीं खींचना। उसने कहा जी ज्यादा जोर से नहीं खींचना तो नीचे कैसे गिराया जाएगा? नहीं जी नहीं, ऐ शर्त अगर तुम्हारा मंजूर है फिर ही कुश्ती होगी, नहीं तो कुश्ती कैंसिल जी। उसने कहा जी चले सर, लोगों ने कहा यार कोई बात नहीं देख लियो क्या पता लगता है, ठीक है पहला तय हो गया। दूसरा क्या कहते हैं? दूसरा ये है जी कि ख्याल करना है लड़ते हुए कुश्ती करते हुए आंखों में हाथ ना लगे किसी का, आंखें जख्मी हो सकती हैं। उन्होंने कहा यार की पता लगता कुछ? नहीं जी बिल्कुल नहीं, तो आना गाल मेरी मननी पड़ेगी, बड़ी शराफत नाल कुश्ती लड़नी है, बदमाशी नहीं दिखानी, तू मेरा दोस्त भी तय है ना, असि बाद भी इकट्ठे रहना है। यानी इससे जाहिर हो रहा था कि वो जो पहलवान जी आई एंड आई कितना छोटे हौसले का मालिक था, वो कोशिश कर रहा था कि ऐसे जवाब तय किए जाएं कि उसकी इज्जत भी बच जाए और मुकाबला भी हो जाए। ये भी तय हो गया जी। तीसरा जनाब, जो लोग यहाँ खड़े हैं आप ये देखिए नाखून चेक कीजिए मेरे मुखालिफ के। उन्होंने कहा तू तो देख लो जी, मैं तो कट के आया घर हूँ, नौ नहीं बचना चाहिए जी किसी पंजाबी से, नाखून नहीं होना चाहिए। जनाब देखा जो मुखालिफ था उसके नाखून थोड़े बड़े होते, नहीं जी आज कुश्ती नहीं हो सकती, आज कुश्ती हो नहीं सकती जी। उन्होंने कहा जी क्यों? नौ वे दे मुकाबले नहीं हो सकता, जरा असूल असी तय कर रहे हैं वो जड़ा है मुकम्मल नहीं हो रहा। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, नहीं करेगा तुझे नाखून, नहीं जी नहीं लग सकता नाखून, कितने भी लग सकता है, मुंह तो निशान पै सकता है, जख्म आ सकते हैं, लिहाजा उतनी देर में करना खुदा का क्या हुआ, वो जो दो अपने हमायतियों का इंतजार कर रहा था वो भी आन पहुंचे, मुसीबत की घड़ी आन पहुंची। तो जनाब ने कहा हाँ जी पहलवान जी आई एंड आई जी, जी सरकार आ गए हो? आ गए जी। यार गलती हो गई लेट हो गए? कोई गल नहीं जी, आज कुश्ती नहीं हो रही लग रही है। क्यों कुश्ती क्यों नहीं हो रही यार, इसलिए परले महल तो आए हैं, थोड़ा सा दूर है तुम, टाइम कट के आए यार, दुकान बंद कर तेरी मेहरबानी शुरू कर दे। नहीं जी नहीं आज नहीं हो सकती कुश्ती जी, देखो तुम देखो तो सही, सारे ये माइती खलोते ने, तुम शुक्र है आ गए दो, देखना नौ देखो नौ कि बदले ने इंज करके मेरी अख चने मारिया, मैं नजर नहीं आया, मैं थले ढा लेगा। उन्हें कहा जी कोई गल नहीं यार, आई एंड आई खैर है, होने दे। नहीं जी नहीं मैं नहीं कुश्ती होने देनी, सवाल ही पता नहीं होता, आई कुश्ती नहीं होगी। तो सारे हम गए, उन्हें कहा यार पहलवान तू की? नहीं जी तुम सवाल ही पता नहीं होता, असूल ही नहीं तय हो रहे, बेमानी करेगा, पहले नौ बता क्या है, हालांकि मैं दो तीन दिन कह रहा था नौ नहीं होंगे, पता है। और उसने आगे से कहा जी मुझे इसने बिल्कुल नहीं कहा, झूठ बोल रहा है। यानी समझ ये आ रही थी कि राय फरार इख्तियार कर रहा था, लड़ना नहीं चाहता, बल करना खुदा का क्या हुआ, उसके कहने पे दूसरी दिन के लिए उठा दिया गया इस मुकाबले को, लोग वापस चले गए। दिन को क्या हुआ कि पाकिस्तान की टीम मेजबानी कर रही थी वेस्ट इंडीज की, वेस्ट इंडीज की टीम आई थी, और एज यूजुअल जनाब दोनों बैठे हुए हैं। मजे की बात देखिए, रात को दोनों किस तरह एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे थे, दोनों बैठे कमेंट्री सुन रहे हैं, और वो हाई एंड हाई जो है जनाब वही अपने आने जाने वालों को कह रहा है, जनाब पाकिस्तान की बैटिंग थी, अच्छे खेल रहे थे, पाकिस्तान के एक बैट्समैन होते थे, बड़ा अच्छा बुलंद बाला किस्म की शॉट्स खेलते थे, तो वो खेल रहे थे, तो वही जनाब वही अपनी जो उनकी जो एक खास निशानी थी जरा लगनी शॉट ऊंची, उन्होंने जनाब दुकान पे अपनी चौकी रखी होती थी, जो सीट रखी होती थी पीछे बहुत बड़ी गद्दी रखी होती थी, उसके खड़े होके नाचना शुरू कर देता था अपनी दुकान पे, हाई एंड आई हाई एंड आई हाई एंड आई। लोगों ने जनाब बड़ा क्यों हो गया? पहलवान जी देखो तो सही तुसी क्या शॉट वजी है, पता तुसी सुनो तो सही तुसी आई लेट हो, कह चुके एक मैं आप सुने बोलने कमेंटेटर उन्होंने कहा आई एंड आई पाकिस्तान बहुत आला खेल रहे जी। तो जनाब उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा जी रात का ही प्रोग्राम है, वो जी ठहर के देखेंगे अली पहले मैच तो देख लेने दो, मैच तो सुन दो, टीवी का इतना ज्यादा रिवाज नहीं था। बोला जनाब आई एंड आई कहते हुए जनाब उन्होंने रात का वक्त आया, रात का वक्त जब आया तो उन्होंने क्या किया कि जब वहां पहुंचे तो जाके उन्होंने कहा आज देखिए क्या बहाना किया, सारे लोग पहुंच गए पहले टाइम तय था। उन्होंने कहा जी चूंकि दोस्त को अपने खातिर करके यार तुम इन्ना लो उम्र छोटा भी है, तू मेरा यार भी है, तू मेरे भरावा करा में की फायदा है, लोग

चल पड़ा। ये हो गया उसकी दूसरा वस्फ। अभी तीसरा वस्फ जो है जो आपको मैं बताना चाहूंगा, उससे पहले मेरा ख्याल चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। कहीं मत जाएगा, तीसरा वस्फ जो होगा आपके लिए बहुत दिलचस्पी का सामान अपने अंदर समेटे बैठा हुआ है। उम्मीद है आप मेरी वापसी का इंतजार करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। चलते हैं एक

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

आपके लिए सबसे ज्यादा आज के प्रोग्राम में दिलचस्पी का बायस होगा। करना खुदा का क्या हुआ, जाहिर घर में बड़े भी थे, हाई एंड आई और पैसा भी काफी था, खुदा बेहतर जानते है। लोग कहते थे कि ये उस जमाने में जो बोतलें जाली बना के बेचते, मगर करना खुदा का क्या हुआ कि 26-27 साल की उनकी एज थी, 28 साल शादी का फैसला हो गया कि जी इनकी शादी का दिन मुकर्रर हो गया। और उन दिनों में शादियां ज्यादातर इतवार के दिन ही होती थी। हम लोग भी सारे मधु थे, मोहल्ले वाले तो मधु ही थे और भी बाकी लोग मधु थे। उन्होंने कहा जी, सब ने कहा कि यार तेरा जुस्सा जिस तरह है तू शरवाकमीज में ज्यादा अच्छा लगता है, तू शरवाकमीज पहन अपने शादी वाले दिन। मुसिर था कि नहीं जनाब, क्यों आप सब मेरे से सर्दियों मेरे को, तो मैं शहर में शीशे देख के आना अपने आप नू, अल्लाह ताला ने बड़ी सोहनी शक्ल दी है, सही मेरा कद बुते, मैं सूट पावांगा, पेंट कोट पा के जाने, टाई ला के जानी, सवाल ही पता नहीं होता, मेरी बीवी ने करवाया है मैनू, तुझे टाई बन के आनी है। ठीक है जी बन लो जनाब। करना खुदा का क्या हुआ कि शादी के दिन आ गया, दूल्हा बन के जनाब आए, दुकान से तय हुआ था कि जाहिर दुकान से उनकी बारात रुखसत होगी और वो जानी थी एक दूसरे महल्ले में। चले महल्ला मैं बता देता हूँ, ये जानी थी लोहारी में, चले ये आपके लिए इश्तिहाक का बायस होगा, लोहारी में जानी थी। बहरल महल्ले में जो एक साहब थे, उस जमाने में गाड़ियां कम हुआ करती थी, गाड़ी जनाब उनकी, उन्होंने कहा जी मैं आई एंड आई पलवानती गड्डी मैं चला के लेके जावांगा। वो एक हाई कोर्ट में मुलाजमत करते थे, वो भी एक अजीब ही शख्सियत थे, उन पर भी किसी दिन एक प्रोग्राम रखूंगा। जनाब अगली सीट पे बैठे जनाब, ये तो पिछली सीट में इनकी वालदा और वालिद बैठे और बाकी जो महल्ले वाले थे, वो तय हुआ जी के आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलेगी, इतवार का दिन था, रश भी कम होता था, बाकी सारे टांगे भी लोग बैठेंगे, लोहारी दरवाजे के बाहर जाके बारात रुकेगी, वहां से जो आई एंड आई पलवान है ये आगे लीड करेंगे जैसे रिवाज होता था, और उनको जो थे बाजे वाले उनको कह दिया गया था बैंड जो था कि जी आपने वहीं पहुंचना है। जनाब आपको बताता चलूं, पलवान जी चूंकि आपको पहले किसी से पता लग चुका होगा, इतने ज्यादा अपनी बात मनवाने के आदी थे कि उन्होंने कहा कि जी मेरी होने वाली बेगम की ये ख्वाहिश है कि ये गाना चले, देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा ते वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, ये गाना जनाब उन्होंने कहा कि ये गाना लगाएं। वही जो बैंड था खूबसूरत सोनी जिसके क्लैरिनेट बजाते थे, खूबसूरत बजाते थे, उन्होंने यही गाना बजाया और क्या चार चांद लगाए उन्होंने। तो ये गाना उनकी मैं ख्वाहिश करूंगा जो हमारे रिकॉर्डर हैं कि ये वक्फे में यही गाना चलाया जाए। ये जनाब उन्होंने खुद जनाब कहा, कह के बड़ा अच्छा बैंड था, अंदरूनी शहर में बड़ा खूबसूरत बैंड था, आप जरूर देखिएगा। ये भी बताता चलूं कौन सा बैंड था, उस बैंड का नाम था सोनी बाजे वाला, सोनी का बैंड। बाद में ये लोग चले गए, बड़े खूबसूरत आदमी थे, वो बजाते थे क्लैरिनेट। बाद में सुने अरब के, सऊदी अरब के फरमान रवा ने उनको अपने पास दरबार में रख लिया, इतनी खूबसूरत धुने बजाते थे। तो उसी महल्ले के आसपास रहते थे, थोड़े पैसे देके वो आ गए, क्योंकि वो आई एंड आई जो है इतनी ज्यादा भोली तबीयत के मालिक थे, मासूमाना उनकी जो था चेहरे से झलकता था मासूमियत, तो जनाब उन्होंने बजाना शुरू किया आगे के बारात की। अच्छा उस जमाने में रिवाज था, इन्होंने स्पेशल जनाब सबने कहा यार एडे ज्यादा हारना पड़ना किसी नहीं, मेरी बीवी होने वाली फरमाइश है कि तुसी 10 दे 50 दे 100 दे नोटों के हार पाने ने। जनाब इन्होंने हार नोटों के पहने हुए जनाब और बारात चल पड़ी। उनका घर थोड़ा सा अंदर गली में जाके था, फल बाजार से गुजरे सारों ने देखा सूट पहना हुआ है, पेंट कोट, जाहिर है हाथ पूरे बंद नहीं हो रहे, खासे जुस्से के मालिक थे, आपको बता चुका हूँ, ऐसे चौड़े बाजू करके चल रहे हैं, बड़ा खूबसूरत मंजर था, टाई बांधी हुई थी, सारे महल्ले वाले उन्होंने जनाब उनके पीछे पीछे, और साथ ही बताता चलूं चूंकि पैसा काफी था, रे बैन की ग्लासेस लगाई हुई थी, काले चश्मे लगाए हुए थे, उसके ऊपर रे बैन का स्टिकर भी नहीं जी नहीं मैं नहीं लाना, लोगों को पता लगे बारात आई है, मजाक है, वो जनाब पहना हुआ है, वो पूरे महल्ले वाले बच्चे साथ साथ भाग रहे हैं। अच्छे साथ साथ जाते जाते जाते जाते अचानक क्या हुआ, जब लड़की का घर करीब आया, हम सब ने एक अजीब मंजर देखा, इस सोर से हमसे आगे थे, खुद इनका इशारा था जनाब ठहर जाओ, एक और चीज बताओ इनकी बड़ी मजे की बात, इन्होंने अपने जो सेहरा पहना हुआ था ना उसके ऊपर, सेहरे के ऊपर इन्होंने एक छोटा सा एक लाइट भी पहनी हुई थी जिस पे लिखा हुआ था स्टॉप, जेब में उन्होंने अपनी कोट की जेब में बैटरी रखी हुई थी और उसमें जो ही खड़े होते थे वो तो दबाते थे सेल को बैटरी को, आया था स्टॉप, पूरी बारात खड़ी होती थी। आप घर के बाहर पहुंचे, आगे सीढ़ियां थी, तकरीबन 100 गज का फासला था, जाहिर लड़की वालों ने आना था इस्तकबाल के लिए, वो जनाब आए, एक अजीब मंजर हुआ, ये जो जहां तक आपको मैं लाना चाहता हूँ, हाई एंड आई के साथ हुआ क्या, रोजे बारात बाजुका ताक होता है, रोजे मैशर से कम नहीं होता, तो ये उनके लिए रोजे मैशर ही था, आप यकीन मुझसे मुत्तफिक होंगे, इत्तफाक करेंगे, हुआ क्या, हाई एंड हाई जनाब खड़े हो गए, हम भी सारे खड़े हो गए, थोड़ी सी बातें करने लग पड़े, अचानक ही
दुल्हन की गली में से 5-6 बच्चे निकले, उन्हें आके भयन भयन भयन उन्होंने जनाब कह के उनको गले लगाना शुरू कर दिया, जफियां डालनी शुरू कर दी। उनमें से 2-3 बच्चे जो बुलंद कामत थे, लंबे कद के थे, उन्हें क्या किया, जो सारे नोट थे ना उसको नोचना शुरू कर दिया, उनके नोटों को नोचना शुरू कर दिया। और सारे 5-6 बच्चे थे, ये गर्मी खाए उनको इधर उधर हाथ चलाए, वो कहाँ छोड़ने वाले थे। जनाब इन्होंने सब हमें वादे देखे, रोको बच्चों ने जनाब जब तक ये करते, जाहिर आपको मैंने पहले बताया फरबा जिस्म के मालिक थे, लिहाजा जो बच्चों ने धक्कम पेल की नीचे गिर गए, जमीन पे गिर गए। और जो बच्चे कुछ नोट थे वो भी जनाब जो दूसरे बच्चे थे उन्हें भी नोचे। अब यकीन करेंगे कि शायद ही कोई 10-5 के नोट बचे हों, 50-100 के सब, और यकीन कीजिए आपके 1000-1000 कम से कम थे उस जमाने में, बहुत ये पैसा था, बड़ी अमाउंट थी। वो जनाब नोच के और भागते बने, चलते बने। इन्होंने जनाब ये खड़े हुए, कट्टा मिट्टी से सूट सारा भर गया। वो जनाब दुल्हन वाले आए, इन्होंने जनाब गालम गलू शुरू कर दी, ये तुम्हारे वो। उन्होंने कहा हमारे तो कोई भी नहीं है। कहते जब उन्होंने मुझे जफी डाली है, मुझे जब गले लगाया, तुमने कहा पायन पायन पायन, असी तुहाडे साले हैं। उन्होंने कहा इसलिए मैंने भी गले लगने दिया उनको, तो आप ये मैं सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरे नोट वापस ला के दे, उतनी देर तक मैं आपके घर में बारात नहीं जाने दूंगा। सबने जो साथ में कहा यार आई एंड आई पहलवान खुदा वास्ते की करना है, छठ पर इस गन एडिकट के पैसा देखो काटा है जी, पैसे की कोई परवाह नहीं, देखो मेरा सूट सारा गंदा हो गया। उन्होंने कहा कोई गल नहीं। खैर दुल्हन वालों को कहा गया जनाब ब्रश का बंदोबस्त किया जाए, कोट झाड़ने वाला, पेंट झाड़ने वाला। सर्दियों का जमाना था, ज्यादातर शादियां सर्दियों के मौसम में हुआ करती, दोपहर को लाया गया जनाब, कपड़े लाए गए, झाड़ पहुंच की गई, ये की गई जनाब, और बड़ी मुश्किल से वास्ते डाल के उनको कायल किया गया कि खुदा के लिए आई एंड आई पहलवान जी ले चले बारात, बुरी बात है, इंतजार लड़की कर रही है। बल आप यकीन कीजिए बारात गई वहां, लेकिन एक चीज बात बतानी पड़ेगी, आजकल का जमाना नहीं था, डिशों पे कोई पाबंदी नहीं थी, ठीक है, कई वन डिश का रिवाज नहीं था, वो कई ये भी जो थी ये भी कदगन नहीं थी कि रात के 10 बजे शादी हाल की बत्तियां बुझ जाएंगी। रात तो खैर हुई नहीं थी दिन के वक्त, लेकिन जाहिर आपको पता है शहर के जमाने में जो लोग होते थे खासतौर पर दुल्हन वाले, ऐसे तमाम करते थे, खासतौर पर अंदरूनी शहर ऐसे तमाम करते थे कि सब कुछ थकावट भूल जाती थी और सब कुछ इंसान के जहन से ये चीज निकल जाती थी कि क्या हुआ है, हमें भी ऐसे हुआ। दुल्हन वालों ने ऐसा लजीज चुनाव किया हुआ था खानों का और बेशुमार डिशें थी, और शहर के खानों में एक और बड़ा वस्फ होता है, पता नहीं आप मजाफात के लोग जानते हैं कि नहीं जानते, बुरा मत मानिएगा, लेकिन शहर के खानों में 3-4 चीजें लाजमी होती है। 2-3 किस्म की चटनी होती है, आलू बुखारे की होती है, इमली की चटनी होती है, ठीक है, पुदीने की चटनी होती है लाजमी। और सर्दियों का जमाना था और उन्होंने अब यकीन कीजिए 2-3 तरह की स्वीट डिशेज का बंदोबस्त भी किया हुआ था। 2-3 तरह के हलवे थे, पेठे का हलवा था, दाल का हलवा था और गाजरों का हलवा था। और उस जमाने में अभी ये जो आजकल चलती हैं जो शेवर मुर्गियां जो होती हैं और जो ब्रॉयलर होते हैं, ये रिवाज नहीं था। सही मानों में मटन का पुलाव था, साथ ही मटन का कोरमा था, तरह तरह की डिशेस थी। पुलवान जी भी जब खाना आया, कुर्सी बड़ी इनके लिए स्पेशल चौड़ी कुर्सी का बंदोबस्त किया गया था, जब इनको खाना इन्होंने देखा इनके चेहरे पे हंसी आनी शुरू हो गई, हाई एंड हाई की। इन्होंने सैर होके खाना खाया जनाब, हमने भी जी भर के खाना खाया, इतना लजीज खाना कौन छोड़ता है। बहरहाल पुलवान जी लगता था उनके चेहरे पे ये चीज बता रही थी जब खा रहे थे, और साथ साथ चेहरे पे उनकी जो मुस्कुराहट थी बता रही थी कि वो जो नाखुशगवार वाकया हुआ है उसको भूल चुके हैं, और अल्लाह ताला की नेमतों को गनीमत जानते हुए खा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तो ये जनाब हाई एंड हाई हमारे इलाके के, वजह यही थी उनकी, हाई एंड हाई क्यों नाम बना वो मैंने आपको बता दिया। शहर के बाकी लोगों की तरह बहुत रशिया थे क्रिकेट के, लेकिन मैंने आपको उनकी जात के 3 पहलू बता दिए, लेकिन अल्लाह उनका गरीब रहमत करे, इस जहाने फानी से कूच कर चुके हैं, सबने जाना है आपको पता है, लेकिन ये उनकी जो हसीन यादें मेरे दिल में और मेरे दिमाग में अभी तक तरोताजा हैं। मैंने सोचा आज मैं हट के अपने प्रोग्राम से एक नया मौजू लेके आऊं और आपको आगाह करूं, आपके गोश गुजार करूं कि हम शहर के लोग जो हैं अपने अंदर कितनी कितनी कहानियां समेटे हुए बैठे हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए और आइंदा प्रोग्राम का, आइंदा मौजू का इंतजार कीजिए। उम्मीद है आप पज़ीराई बख्शेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।

www.musicfield.edu.ek. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

www.ucp.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

0: कंट्रोल, आवाज़ आ रही है? सच बोलूं, दिल भी थोड़ा कांप रहा है।
1: आवाज भी और
2: धड़कन भी सन्न हो गया।
0: The nets fly over and out.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یوسیپی

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: Assalamu alaikum and welcome to the Faculty Hour program. Today we have some amazing guests with us, जिनके साथ हम English learning को लेके myths और facts के बारे में बात करेंगे कि हम अपनी English learning को कैसे improve कर सकते हैं. So stay tuned with us. आज हमारे साथ कुछ expert guest हैं. So let me introduce to them. At the first we have Ma'am Tayyaba Rana. She is Deputy Manager at English Language Center. इनका एक्सपीरियंस इंग्लिश लर्निंग और मैनेजमेंट के फ्यूजन को समझने में बहुत मदद देगा। एंड नेक्स्ट वी हैव मैम शीबा सुल्तान। शी इज़ लेक्चरर एट UCP एंड टीम लीड राइटिंग सपोर्ट सेंटर। सो वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन आंसर सेशन एंड लर्न अलॉट फ्रॉम दैट। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन मैम, स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन इंग्लिश लर्निंग को लेके क्या हो सकता है और हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं?
3: अच्छा, थैंक यू हबीबा फॉर इनवाइटिंग मी एंड आस्किंग माय ओपिनियन अबाउट दिस वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे जो मिसकंसेप्शंस हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के हिसाब से हैं, क्योंकि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को जो लर्निंग का तरीका स्कूल्स और कॉलेजेस में है वो उस लेवल का नहीं है कि जैसे कि इंग्लिश बच्चों को पढ़नी चाहिए। इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक स्किल है जिसमें कि हम मुख्तलिफ स्किल्स में मास्टरी हासिल करते हैं, जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग तो हम कहीं सोचते ही नहीं है ना, क्योंकि वी डोंट अलाउ आवर स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन, एंड उनकी वो आदत डेवलप हो चुकी होती है जब तक कि वो हमारे पास यूनिवर्सिटी में आते हैं और वो बिल्कुल एक लेक्चर स्टाइल से पढ़ के आ रहे होते हैं। यहाँ पे हम उनको एक बिल्कुल डिफरेंट जो है वो एक्सपीरियंस करवाते हैं। आपको मैं बताऊँ, और ये आपके लिए बहुत शायद नई बात भी हो लेकिन नहीं भी हो, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं और आप भी पढ़ रही हैं उस तरह से। हमने ELC में, जबकि डॉक्टर हबीब काजी साहब ने ज्वाइन किया है, तो उन्होंने इंग्लिश को एक मॉडर्न जो है, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने उसको एक मॉडर्न फुटिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया है। हम लोग जो हैं वो एक कैम्ब्रिज का जो है वो डिज़ाइंड सिलेबस या कोर्स पैक आप उसे कह लें, हम वो यूज़ करते हैं। दैट इज़ सॉफ्टवेयर बेस्ड और हम उसमें इन स्किल्स जिनका मैंने पहले जिक्र किया इनके ऊपर फोकस करते हैं, और हम बच्चों को क्लास में लिसनिंग करवाते हैं। थैंकफुली वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़ इन UCP, हमारे पास ऑडियो वीडियो, हमारे पास हर तरह की फैसिलिटीज़ क्लास में अवेलेबल है, और प्रोजेक्टर्स हैं, मींस वी कैन हैव अ गुड यूज़ ऑफ व्हाट सॉफ्टवेयर वी हैव। ओके, तो हम बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि लिसनिंग एक्टिविटीज़ क्लास में करवाते हैं। इसके अलावा जो है हमारी तमाम क्लासें जो हैं वो एक्टिविटी बेस्ड हैं, स्टूडेंट्स जो हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और वो खुद मतलब इट इज़ मोर ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड एंड लेस ऑफ टीचर सेंटर्ड। जबकि जो हमारा एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, एज़ आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, कि उसमें क्या है कि वो तो एक लेक्चर स्टाइल है कि टीचर्स आते हैं और वो जो भी टॉपिक होता है वो बच्चों को क्लास में करवा के बस बोर्ड का यूज़ किया एंड देन दे कम आउट ऑफ और स्टेप आउट ऑफ द क्लास। बट हम क्या करते हैं, वी गाइड द स्टूडेंट्स, वी टेल देम दैट हाउ दे आर गोइंग टू यूज़ एंड हाउ दे आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट देयर लैंग्वेज और देयर लैंग्वेज लर्निंग इनटू द एक्टिविटीज़ एंड देन दे देमसेल्व्स डू इट। तो ये एक हमारा थोड़ा सा मुख्तलिफ है और हमें इसमें अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, बच्चे इसको लर्न कर रहे हैं और उससे इम्प्रूवमेंट भी आ रही है, होपफुली वो फील कर रहे हैं और
2: मैम, जैसे कि आपने बोला कि पीछे से वो एक टिपिकल जो काफी अरसे से लर्निंग सिस्टम चल रहा है, तो स्टूडेंट्स जब इधर आते हैं तो इनको एकदम बिल्कुल नया एनवायरनमेंट मिलता है इंग्लिश लर्निंग को लेके, तो सम टाइम स्टूडेंट्स को उस चीज में ढलने में टाइम भी लगता है, तो टीचर्स किस तरह से उस चीज को हैंडल करते हैं कि स्टूडेंट्स उस एनवायरनमेंट को अच्छे से कोप अप कर सके?
3: अच्छा, हमारा चूंकि एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, हमने इन तमाम चीजों को जो है वी टेक इनटू अकाउंट कि ये कैसे होगा। उसमें ये है कि हमारे टीचर्स जो हैं वो ग्रुप एक्टिविटीज़, पेयर एक्टिविटीज़ और उससे हेल्प लेते हैं, और चूंकि ये सारा सिस्टम ही जो है वो ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड पेयर एक्टिविटीज़ और डिस्कशन पे बेस करता है, तो उसमें ये है कि चूंकि स्टूडेंट्स दे आर कम्फर्टेबल विद देयर फेलो स्टूडेंट्स विद देयर पीयर्स, और पीयर चेकिंग जो है एक बहुत हमारा एक खास आप कह लें कि वो है, उसमें बच्चों को ये डर नहीं होता कि टीचर हमें जो है वो कोई पिनलाइज करेगी किसी चीज़ के ऊपर या करेगा, ठीक है, तो वो एक अब एक इन्वायरमेंट, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में सीखते हैं, ठीक है। डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है, आई एम नॉट सेइंग कि वो एकदम वो जो है वो यूज टू हो जाते हैं और वो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, इट टेक्स टाइम, बट विद इन 4-5 weeks दे गेट इन टू दैट सिस्टम और हम फिर उसके मुताबिक उनको चलाते हैं, और हमने उसमें एक अपनी प्रोग्रेशन भी रखी हुई है, यानी अच्छा। कि जो इंग्लिश वन है उसमें हम उनको बेसिक्स के ऊपर फोकस करते हैं, और जो है वो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि वो पैराग्राफ राइटिंग सीखते हैं, दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, मींस ग्रामर और सब चीज़ें तो साथ साथ चलती हैं ना, उन्होंने तो चलते रहना है। उसके बाद जो इंग्लिश टू में वो जाते हैं तो वो फिर ऐसे राइटिंग एटलीस्ट 5 paragraph ऐसे को वो जो है वो करते हैं, उसमें मास्टरी लेने की कोशिश करते हैं, एंड देन वी हैव डिजाइंड आर इंग्लिश 3 इन सच अ वे जो कि इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज है, ESP, वो हम फिर उसको कनेक्ट कर देते हैं हर फैकल्टी के मुताबिक। अगर कोई मीडिया की फैकल्टी का बच्चा है तो उसका तमाम जो कंटेंट है वो मीडिया रिलेटेड है, अगर लॉ की फैकल्टी का बच्चा है तो द कंटेंट इज लॉ रिलेटेड, अगर IT का है तो वो IT से रिलेटेड है, तो फिर वो जो है हम उनको तैयार करते हैं कि वो जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएं तो वो लैंग्वेज की जो फंक्शनैलिटी है उसको कैसे यूज कर सकते हैं।
2: आई एम हैप्पी टू हियर दैट के इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर इतना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है स्टूडेंट्स के उस एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए। मैम शिबा, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि UCP एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन से स्टूडेंट्स आते हैं, इवन के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड जो है रूरल एरिया से होता है, जैसे सिंध हो गया, साउथर्न पंजाब, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स कैसे इफ़ेक्टिव टास्क दे सकते हैं कि उनको वो चीज़ें इजी लगें, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे होते हैं।
4: जी बिल्कुल, यहाँ पे स्टूडेंट्स पाकिस्तान के सारे हिस्सों से आते हैं, और उसमें हम यही स्ट्रेटजीज अपनाते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा एरर करेक्शन को स्टूडेंट के ऊपर रेप्रिमांड नहीं करते, कि स्टूडेंट्स को हम कंफर्टेबल रखते हैं, और UCP का जनरल इन्वायरमेंट भी इस तरह का है कि वी अप्रिशिएट द वेरियस कल्चर्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि कल्चरल डे मनाया जाता है, हर स्टूडेंट का जो जिस खित्ते से वो आए हैं उनके कल्चर को अप्रिशिएट किया जाता है, तो क्लासरूम में भी हमारा ये एक स्टाइल है कि अगर जो स्टूडेंट जिस भी एक्सेंट में बात करता है या उनकी जैसी भी प्रोनंसिएशन है, हम उसको इनक्रेज करते हैं कि वो उसको जो है वो बेशक स्टैंडर्डाइज इंग्लिश की तरफ लेके चलें, लेकिन देर इज़ नो कल्चर ऑफ क्रिटिसिज्म इन अ वे दैट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट द स्टूडेंट्स। वी इनक्रेज आर students to speak with their accents, we encourage them to improve their pronunciation, or rather to take their pronunciation towards standardized English with the passage of time. तो एकदम से हम उनको नहीं बम्बार्ड कर देते चीज़ों के साथ, हम उनको उन्हीं के स्टाइल में लेके चलते हैं, और ये जैसे कि मैम ने बताया है कि वी हैव अ लॉट ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़, तो इवन हमारी जो एंड ऑफ सेमेस्टर की प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन होती हैं वो ग्रुप में हम स्टार्ट करते हैं, सो वी गिव अ चॉइस टू द स्टूडेंट्स कि आप सोलो प्रेजेंटेशन करना चाहें तो कर लें, लेकिन ग्रुप में ये होता है कि बच्चों को एक दूसरे की सपोर्ट मिलती है।
2: यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और मैम से क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला दोबारा से शुरू करेंगे। तब तक सुनते रहिए FM 92.6।

0: Welcome back, listener. I'm your host, Ume Habiba, at 92.6. So, continue our question answer session. Ma'am, आपने जैसे कि बताया कि English Language Center किस तरह से contribute कर रहा है. तो एक typical classroom से हट के भी English Language Centers की क्या खिदमात हैं जो सर अंजाम दी जा रही हैं, आप उसके बारे में बताएंगे.
1: We are part of the Faculty of Languages and Literature और ELC standalone भी बहुत सारी जो है वो supplementary हमारे programs हैं. हमारा एक बड़ा important program है which is called the Skill Center, और Skill Center में हम students को extra classes के ज़रिए उनकी जो भी English में जो उनको ज़रूरत है support की, writing में, listening में, speaking में, वो हम देते हैं. उसके साथ हमारा है Writing Support Center. This is part of our strategic pillar to become part of an international university. किसी भी university को देख लें international, उनका एक writing support center होता है जो पूरी university को provide करता है editorial services उनके research articles के लिए, और students को हम provide करते हैं tutorials के. कोई भी student किसी भी department का अगर वो बैठ के किसी हमारे team member के साथ थोड़ा सा time spend करना चाहते हैं अपने writing को improve करने के लिए या speaking को, ज़्यादा हम writing support centers, we focus on the writing, तो हम उनकी help करते हैं. और साथ ही में हमारा जो है वो फॉरेन लैंग्वेजेस का भी है. वी टीच फॉरेन लैंग्वेजेस टू द एंटायर यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स उसके लिए ऑप्ट करना चाहते हैं. अभी हम चाइनीज और फ्रेंच क्लासेस जो है वो ऑफर कर रहे हैं थ्रू द ELC. थैंक यू.
0: तो उन क्लासेस की ड्यूरेशन क्या होती है?
1: उनकी रेगुलर ड्यूरेशन होती है. स्किल सेंटर की जो क्लास होती है वो एक हफ्ते में 3 आवर्स की क्लास होती है. एंड जो हमारे फॉरेन लैंग्वेजेस की क्लास होती है वो हमारी इंग्लिश की क्लास की तरह वी हैव 1 आवर प्लस स्लॉट, एंड दैट इज also a 3 credit hour course. So these are proper courses through the university. Unke 3 hours jo hain wo credit hours hote hain.
0: So ma'am, aap bataein ke learning center kis tarah se contribute kar raha hai. Aap kuch add karna chahe to kahengi.
2: Main thoda sa isme aapko aur batana chahti hu skill center ke bare mein, kyunki ye ek hamara prime project hai jo ke jab ka ELC jo hai wo University of Central Punjab mein hum logo ne English language center ko develop kiya, uske sath hi humne skill center start kiya. Ye hum kuch extra jo hai services provide karte hain to the UCP students. Aap jo pehle question कर रही थी कि जो डिफरेंट एरियाज से स्टूडेंट्स आते हैं और डिफरेंट बैकग्राउंड्स के होते हैं और उनकी जो है आप कह लें कि प्रोफिशिएंसी भी डिफरेंट होती है अबाउट द लैंग्वेज, उसको हम कैसे केटर करते हैं और उनको एट पार लेके आते हैं, तो स्किल सेंटर इस सिलसिले में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है. उसमें यह है कि ये एक 0 credit कोर्स है, पास फेल के बेस पे है ये. इसमें ग्रेडिंग नहीं हम करते हैं, ठीक है, और इसमें हम फोकस करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के ऊपर. और उस किस तरह हम फोकस करते हैं कि हम ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को जो कि एंट्री टेस्ट में जिनके 50% या उससे कम मार्क्स आते हैं उनको हम एनरोल करते हैं स्किल सेंटर में. और उसकी हम अलग से, और उसके लिए हम अपने जो बहुत ज़्यादा सीनियर हमारी फैकल्टी है उसको हम डेडिकेट करते हैं फॉर दीज क्लासेस, ठीक है. हमारे टीम लीड्स और हमारी जो सीनियर फैकल्टी है वो ये क्लासेस लेती है. और जैसे शीबा ने कहा कि 3 credit hours इनकी भी प्रॉपर क्लास है और वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट UCP के स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं, उसको हम कोई चार्ज नहीं करते. और आप ये देखिए कि द बेस्ट ऑफ आर टीचर्स वो उनको साइड बाय साइड दे आर टेकिंग एन इंग्लिश कोर्स इन English 1 एंड साइड बाय साइड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर प्रोफिशिएंसी हम उनको स्किल सेंटर भी ऑफर कर रहे हैं उतने ही आवर्स का, और वीक में 3 hours की क्लास होती है उसकी भी. और उसमें हमारा मुकम्मल फोकस जो होता है वो एक बहुत ही फन लविंग एनवायरनमेंट, एक बहुत ही रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में होता है, जिसमें कि हम ना सिर्फ जिस तरह मैंने आपको बताया कि English 1 में एक्टिविटीज़ को हम करते हैं उस पर बेस करता है, बल्कि इसमें टीचर्स के पास भी फ्री हैंड होता है कि वो अपनी क्लास की जो है कैपेबिलिटी को देखते हुए वो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं. अब जैसे स्किल सेंटर के जो टीचर्स हैं वो फिर शॉर्ट मूवीज़ भी दिखाते हैं, वो पॉडकास्ट भी दिखाते हैं उसके अंदर, वो लिसनिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि जो वो बच्चे हैं जो कि किसी वजह से भी जो है वो कुछ पीछे रह सकते हैं तो वो उसको कवर कर सकें, ना सिर्फ कवर कर सकें बल्कि ज़्यादा बेहतर हो सकें. और जितना ज़्यादा उसमें स्पीकिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर किया जाता है, क्योंकि क्लास में इतना मौका नहीं मिलता, आपने सिलेबस भी ख़त्म करना है, आपने जो है वो टर्मिनल एग्ज़ाम्स की तरफ भी जाना है, आपने हर चीज़ करनी है, तो इसमें भी है, एग्ज़ाम्स हैं, असेसमेंट्स हैं, इट्स नॉट लाइक दिस कि वो नहीं है, लेकिन वो इस तरह है कि उनको बेस किया जाता है स्टूडेंट्स के जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। तो इसलिए जो है मैं बिल्कुल इस आपके प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं वो प्लीज़ ज़रूर इसको अटेंड करें अगर वो एनरोल हो गए हैं उसके अंदर, क्योंकि ये उनकी एक प्रोफिशिएंसी, उनकी एबिलिटी जो कि लैंग्वेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नो मैटर हाउ मच गुड इन योर स्टडीज़ इन योर ओन सब्जेक्ट, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं तो यू आर अनएबल टू परफॉर्म बेटर इन योर प्रोफेशनल लाइफ। तो इस प्रोग्राम के थ्रू मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि वो ज़रूर इसमें अगर वो एनरोल हो गए हैं तो वो रेगुलरली अटेंड करें इसकी क्लासेस को।
0: मैम, कम्युनिकेशन को लेके ही मेरा क्वेश्चन है, मतलब हम अक्सर देखते हैं कि स्टूडेंट्स राइटिंग में और उनकी इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब स्पीकिंग का टाइम आता है तो सम टाइम स्टूडेंट उस चीज़ को लेके शाय फील करते हैं या इतना एफिशिएंटली वो बोल नहीं सकते। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम अपनी स्पीकिंग जो है अच्छी करें, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी, कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो वो करें तो वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी?
2: अच्छा, इसमें ये है कि लिसनिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। आप ये देखें कि लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट इट्स अ ह्यूमन एक्टिविटी एक्चुअली, इट्स नॉट सब्जेक्ट एज आई सेड अर्लियर। हम जब पैदा होते हैं तो साल डेढ़ साल हम कुछ नहीं बोलते, ठीक है, हम सुन रहे होते हैं, हम इमेजेस बना रहे होते हैं अपने माइंड में, जो कुछ हमारी मदर कह रही होती हैं, हमारे सिबलिंग्स कह रहे होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कह रहे होते हैं, हम उससे एक इमेजेस बनाते हैं। एंड देन आफ्टर एन ईयर एंड हाफ वी स्टार्ट टॉकिंग, हम वॉइस आउट करना शुरू करते हैं, जो कि इतना परफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे बच्चे आते हैं तो प्रोनंसिएशन ठीक नहीं होती, तो उनके एक्सेंट ठीक नहीं होते, ठीक है, बिल्कुल ये ऐसे ही होता है। तो ये इतना नेचुरल प्रोसेस है लैंग्वेज लर्निंग का। तो मैं हमेशा बच्चों को यही एडवाइस करती हूँ कि वो जितना ज़्यादा लिसनिंग करेंगे, मतलब वो इसके लिए वो मूवीज़ देखें इंग्लिश लैंग्वेज की, वो प्रोग्राम सुने, अब तो बहुत जो है उनके पास एवेन्यूज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है। द मोर दे लिसन द मोर दे विल बी एबल टू स्पीक वेल, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है कि जो कि बहुत तेज़ी से डिमिनिश होती जा रही है, इवन एल्डर्स में भी ये एक चीज़, हमारी रीडिंग हैबिट्स बहुत जो हैं वो एक उनको सेट बैक मिला है मीडिया और इन सब चीज़ों की इतनी फरावानी की वजह से। तो मेरा ये एडवाइस है कि ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ें जो आपके इंटरेस्ट का है, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत फिलोसफिकल चीज़ें पढ़ें, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप एटलीस्ट स्पोर्ट्स के बारे में रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ें, अगर आपको मीडिया में इंटरेस्ट है, आप मूवीज़ के रिव्यू पढ़ना चाहते हैं आप वो पढ़ें, आपको फूड से इंटरेस्ट है तो फूड से रिलेटेड चीज़ें पढ़ें, ठीक है, जो इंटरेस्ट है। पहले आप इस तरह स्टार्ट करें, जब आप इस तरह स्टार्ट करेंगे और आपको रीडिंग की आदत पड़ जाएगी तो फिर आप और भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं और फिर उसको आप यूज़ करें, जो नए वर्ड सीखते हैं आप उनको लाजमी यूज़ करें, बिकॉज लैंग्वेज इज़ अ स्पोकन प्रोसेस, जब तक आप बोलेंगे नहीं वो आएगा नहीं आपको, ठीक है ना। यू कैन टेक द एग्जांपल फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव दैट के हमारे जितनी भी रिलेटिव्स या हम खुद भी जाते हैं, जब भी अब्रॉड जाएंगे तो आप बोलना शुरू कर देते हैं क्योंकि वहाँ कंपल्शन होती है कि आपने बोलना है, तो आप जब तक ये कंपल्शन अपने ऊपर नहीं लेके आएंगे कि मैंने बोलना है तो उस वक्त तक ये बेहतर नहीं होगा ना।
0: लिसनर, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक और वापस आते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद और फिर से हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स का सेशन। तब तक सुनते रहिए रेडियो 92.6।

0: broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक लिसनर्स, एंड आई एम योर होस्ट उम्मे हबीबा। तो हम अपने क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला दोबारा से शुरू करते हैं। मैम तैयबा, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने बोला कि हमें बुक रीडिंग की हॉबी डेवलप करनी चाहिए। तो जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल हम सोशल मीडिया के अंदर इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि वो बुक रीडिंग लोगों के लिए काफ़ी बोरिंग हो गया है ना, तो उस चीज़ को हम अपने लिए कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं?
4: अच्छा, रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ बुक्स ही पढ़ें, और आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, आप जो है न्यूज़पेपर जो है वो सब अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और न्यूज़पेपर्स में, और स्पेशली उनके जो संडे मैगजीन्स हैं, उसमें बहुत कुछ आता है हर तरह का, ठीक है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड और हर तरह का, जो कि स्टूडेंट्स को मोस्टली इंटरेस्ट की उनकी टॉपिक्स होते हैं। इसके अलावा बुक्स भी अवेलेबल हैं, आप गुड रीड्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप किंडल पे जा सकते हैं, आप PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप उस तरह कंफर्टेबल हैं, डेफिनेटली आजकल की जनरेशन उस तरह कंफर्टेबल है, तो वो। और इसमें बस बेसिक चीज़ ये है कि आप बेशक एक पेज पढ़ें, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने जी पूरी वो। और फिर दूसरी बात यह है कि एक और चीज़ जो कि हम यूनिवर्सिटी में भी है, और यूनिवर्सिटी हमारा जो फैकल्टी है लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, हमने रीडिंग सर्कल्स बनाए हुए हैं। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो इन रीडिंग सर्कल्स में आएं। उसमें यह होता है कि कोई एक बुक चूज कर ली जाती है और उसके चैप्टर्स डिवाइड कर दिए जाते हैं। उसमें ये होता है कि उस पर फिर डिस्कशन होती है, और किसी भी राइटर को भी बुलाया जाता है समटाइम्स, और टीचर्स तो होते हैं, तो वो एक ज़बरदस्ती डिस्कशन जब होती है तो बच्चों का खुद ब खुद स्टूडेंट्स का जो एक इंटरेस्ट है वो उसके अंदर डिवेलप हो जाता है। और यूनिवर्सिटी में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, स्टूडेंट्स अपनी रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं बाई यूजिंग ऑल दीज एवेन्यूज।
3: तो मैम शीबा, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि स्टोरी टेलिंग स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी और कम्युनिकेशन को किस तरह इफेक्टिवली इम्प्रूव कर सकता है?
5: देखिए, जो हम बात करें रीडिंग की, राइटिंग की, तो ये एक्चुअली दीज आर यू कैन कॉल देम लाइक एक्सरसाइजेस फॉर योर ब्रेन। तो इसके लिए डिसिप्लिन भी चाहिए होता है, राइट? कि जो बंदा जिम जाएगा
3: जी,
5: उन्हीं के जो मसल्स हैं वो टोन होंगे, बाकी जो जिम नहीं जाएंगे उनके मसल्स टोन नहीं होंगे, राइट? तो अगर हम एफर्ट करेंगे, स्टोरी टेलिंग के एफर्ट करेंगे, स्टोरी रीडिंग के एफर्ट्स करेंगे, तो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो फायर अप होते हैं और वो डिवेलप होते हैं। स्टोरी टेलिंग एक डिसिप्लिन है, उसमें ये होता है कि लोग एक तरीके से एक लय में एक नैरेटिव बताते हैं बैठ के। और जो हमारा करंट जो लिटरेचर है वो शुरू ही स्टोरी टेलिंग से हुआ था। जो पुरानी, जो जैसे आपने सुना होगा पिशावर में है किस्सा खवानी बाज़ार, तो उसमें ये होता था कि पुराने जो ट्रेडर्स होते थे वो तजारत करते हुए जब ट्रैवल करते थे तो वो शाम के टाइम उन्होंने बैठना होता था, उन्होंने आराम करना होता, तो बैठते थे और आग जली होती थी क्योंकि मौसम ठंडा जो होता था, एंड दे वुड टेल स्टोरीज। तो वो कोई आम कहानियाँ नहीं होती थी, वो पुराने वॉर्स की कहानियाँ और ग्रैंड टेल्स, और जो पुरानी फिर नज़में जो बनी, जिसको अंग्रेज़ी में हम ओड्स कहते हैं तो और एलिजीज कहते हैं, वो लंबी कहानियाँ हैं जो पुराने लोग बताते बताते इस मतलब एक पॉइंट पे आए कि वो उसको किसी ने लिखना शुरू किया। सो स्टोरी टेलिंग में आपका कल्चर प्रिजर्व होता है, स्टोरी टेलिंग में आपकी वैल्यूज़ प्रिजर्व होती हैं, और स्टोरी टेलिंग में जो बता रहा होता है कहानी वो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक बयानिया करने की उसकी प्रैक्टिस होती है। सो ये एक डिसिप्लिन है जो कि बहुत हेल्पफुल होता है, और ये आपके हर फील्ड में यूज़ होता है। देखें, अगर आप लॉ में, जब आपका मूट कॉम्पिटिशन होता है, जब एक वकील जो है वो अपना केस लड़ रहा होता है, तो दे एम्प्लॉय स्टोरी टेलिंग। आप मार्केटिंग में जाएँ, जो बिजनेस के लोग हैं, तो पिच जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ बेसिकली टेलिंग अ स्टोरी एंड सेलिंग योर प्रोडक्ट। सो दिस इज स्टोरी टेलिंग, ये इसके फायदे हैं और ये इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड है।
3: मैम, जैसे कि हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आजकल देखने को मिलता है, तो आपको लगता है कि जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो वाकई ही एक पर्सन की एबिलिटीज को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है कि उसका कितना पोटेंशियल है?
5: ये एक डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है कि जी टेस्ट ग्रेड इम्पॉर्टेंट है या काबिलियत इम्पॉर्टेंट है, क्या ग्रेड इंसान की काबिलियत को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, क्या वो सारी कंडीशंस जो एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट की होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं या नहीं करती हैं, राइट? लेकिन उसमें जो एजुकेशन की जो थियरी है या फिलॉसफी है, उसमें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं तो हमें कुछ ना कुछ तो एक तराजू चाहिए है ना किसी चीज़ को मेजर करने के लिए. तो टेस्ट एक वे टू मेजर है, एक तराजू है जिसके ऊपर आप रख के देखते हैं कि एक कैंडिडेट जो है वो इन कंडीशंस के अंदर बैठ के क्या इन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर सकते हैं या नहीं. बेशक के वो कंडीशंस अननेचुरल होती हैं, टेस्ट का स्ट्रेस होता है, राइट, बहुत सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसमें भी एक कैंडिडेट की, एक स्टूडेंट की पर्सनालिटी ट्रेट सामने आते हैं कि उनमें कितनी

0: और बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब स्टूडेंट ग्रेजुएशन की तरफ आते हैं तो एज अ प्रोफेशनल स्टडी वो इंग्लिश को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, वैसे वो इंग्लिश सीख रहे हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज समझ रहे हैं। तो आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि एज अ प्रोफेशन जो है इंग्लिश सब्जेक्ट आपके लिए किस तरह रहता है, और अगर कुछ स्टूडेंट्स एज अ प्रोफेशन इंग्लिश लैंग्वेज को परस्यू करना चाहते हैं तो आप क्या एडवाइस देंगी?
1: एज अ प्रोफेशन देखिए, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया के हर कोने में यूज़ में, पूरी दुनिया की जो नॉलेज है वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो चुकी है। इंग्लिश लैंग्वेज इतनी हैवी हुई इस तरह से कि जिनकी वो लैंग्वेज थी उन्होंने उसके अंदर सारी चीज़ें समेट ली, राइट? आपने कोई रेसिपी पढ़नी है वो इंग्लिश में अवेलेबल है, आपने कोई मैनुअल देखना है किसी भी प्रोडक्ट का वो सबसे पहले इंग्लिश में है, आपने कोई भी लॉ बनाना है वो आप जाके तो इंग्लिश में ही आ जाके वो बनता है। सो इंग्लिश का जो वेट है वो अभी तक कम नहीं हुआ। जो लोग इंग्लिश में एक कह सकते हैं प्रोफिशिएंसी या एक्सीलेंस रखते हैं, ये एक बहुत हार्ड ट्रूथ ऑफ लाइफ है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दी जाती है बिकॉज दे हैव एक्सेस टू द नॉलेज दैट इज अवेलेबल इन द लैंग्वेज। सो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश को चूज करते हैं एज देयर प्रोफेशन, दे एंड अप हैविंग अ एडवांटेज एनी हाउ। इसको आप किसी भी फील्ड में ले लें, आप इंग्लिश की डिग्री करते हैं, लोग बिजनेस में जाते हैं, लोग साइकोलॉजी में जाते हैं, लोग डिप्लोमेटिक रिलेशंस में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं,
0: उनकी प्रोफिशिएंसी होती है, मतलब क्योंकि इंटरनेशनली स्कोप बन जाता है
2: लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर हो जाते हैं। और जो ये बात है ना, हम अभी ELC के हवाले से कर रहे थे, इसमें ये है कि हमने जहाँ पे और हम सर्विसेज दे रहे हैं वहाँ पे हम हमारा बहुत रोल है कि हम बहुत सी वर्कशॉप्स दे रहे हैं, नॉट ओनली टू स्टूडेंट्स बट टू टीचर्स एज वेल। ठीक है, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको जो है LIC जो है UCP में और CPE उसके थ्रू डिफरेंट वर्कशॉप्स में भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो मैं चूंकि मैनेजमेंट में हूँ तो मैं थोड़ा सा उधर की बात भी करूँगी कि हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑल्दो और ये भी बताता है कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है लैंग्वेज की, जो आप पहले क्वेश्चन मिस शीबा से कर रही थी, वो इम्पोर्टेंस है तो हमें हर चीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है। अगर ये इम्पोर्टेंस ना हो तो हमें इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व ना किया जाए ना, बिकॉज लैंग्वेज इट्सेल्फ हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। और फिर इसके अलावा हमने पिछले सेमेस्टर में CP के ही प्लेटफॉर्म से, जो कि UCP में है, उससे हमने जो है IELTS और कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्सेज भी ऑफर किए थे। वो पेड थे लेकिन वो भी हमने ऑफर किए।
0: वो तो देखा जाता है ना कि जैसे IELTS का सिस्टम भी बेस करता है लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो UCP के अंदर भी जो एक कोर्स पैक चलाया जा रहा है वो भी उसी पे बेस करता है, तो स्टूडेंट्स के लिए बाद में इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा आसानी होती है।
2: यस, यू आर राइट।
0: तो मैम तैयबा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी या कोई ऐसा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हूँ।
2: अच्छा, मैं अभी रिसेंटली बड़ा खुश हुई, मेरे एक स्टूडेंट थे और उन्होंने मेरे साथ शेयर किया उनकी एक शॉर्ट स्टोरी उन्होंने लिखी। तो और मतलब जब उन्होंने ज्वाइन किया था यहाँ पे, और अब वो BS करके, उनके मुझे यहाँ पे तकरीबन 8 ईयर्स हो गए हैं UCP में, तो वो जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो ही वॉज सो शाई इवन टू स्पीक समथिंग और राइट, और लैंग्वेज इतनी आप कह लें कि वो बिल्कुल बेसिक लेवल की थी कि वो ही ऑलवेज सेज टू मी कि आप प्लीज़ उर्दू में क्वेश्चन ले लिया करें, क्योंकि आई एम वेरी अ बिट स्ट्रिक्ट कि मैं कहती हूँ कि आप इंग्लिश में बोल रहे हैं ना क्लास में और ये वो इस तरह। तो मतलब वो उस तरह के लेवल का बच्चा था कि एक तो शाये भी बहुत, एक वो उसको ना वो सारा। और अब जब BS करने के बाद उसने अपनी शॉर्ट स्टोरी लिखी और मुझे कहा कि आप इस पे रिव्यू दें अपना, तो इट वाज रियली मुझे फील हुआ कि शायद कहीं मैंने भी कुछ मेहनत तो उसी की है डेफिनेटली कि वो यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन मुझे लगा कि शायद UCP ने और मैंने भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसको यहाँ तक लेके आने में। तो ये मैं आई फील वेरी प्राउड ऑफ।
0: एक अच्छा टीचर एक स्टूडेंट को बहुत कुछ सिखा जाता है, पढ़ाई से हटके वो आपको जिंदगी के मामलात में भी बहुत सी गाइडेंस देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह UCP में ऐसे बहुत से फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनसे स्टूडेंट्स ना सिर्फ एजुकेशनल बल्कि अपनी बाहर की जिंदगी में भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैम शीबा, सेम क्वेश्चन फ्रॉम यू, इफ यू वॉन्ट टू टेल।

0: जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं. हमारे स्टूडेंट्स शायरी करते हैं, दे राइट स्टोरीज, दे आर एबल टू रिप्रेजेंट अस. अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स गए थे एक मूड कॉम्पिटिशन में इस्लामाबाद में, एंड दे वर एबल टू विन द कॉम्पिटिशन. और हम लोग खुद भी अपने टीचर्स का ही प्रोडक्ट है ना, तो आई थिंक के UCP में हमारी बहुत कोशिश है. एंड आई रियली अप्रिशिएट द एनवायरनमेंट ऑफ UCP. एक बहुत ही कंडक्टिव एनवायरनमेंट है जिसमें लोग पढ़ते हैं और एन्जॉयमेंट भी होती है, और इसमें एक मेंटोरशिप हमारा चलता है. बहुत सारे टीचर्स स्टूडेंट्स की मेंटोरिंग करते हैं, और इस तरह से ऑफकोर्स देखें स्टडीज़, बेशक लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, चाइनीज़ हो, या कोई भी और डिसिप्लिन हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी. ईजी तो है ही नहीं. अगर ईजी होती तो फिर इसका कोई ऑनर नहीं होता. आखिरी दिन ग्रेजुएशन पे जब स्टूडेंट्स को उनका गाउन होता है, उनका मोटर बोर्ड होता है, उनको जब डिग्री दी जाती है तो वो एक ऑनर है. तो वो ऑनर आसानी, कोई भी ऑनर आसानी से नहीं मिलता. तो मेहनत से नहीं डरना है, मेहनत तो करनी है, लेकिन वी ट्राई आर लेवल बेस्ट एट UCP स्पेशली टू प्रोवाइड आर स्टूडेंट्स विद एवरी फैसिलिटी. वी हैव द जिम, वी हैव द इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर, एंड वी हैव वंडरफुल कैफेटेरियाज के स्टूडेंट्स का एक हेल्दी एनवायरनमेंट में वो नर्चर एंड ग्रो कर सके.
1: जी जी, जैसे कि देखा जाता है कि UCP का जो कैरियर सर्वे सेंटर है वो बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है इस फील्ड में, कि बच्चे जैसे ही ग्रेजुएट होते हैं वो प्रोफेशनली इन हो जाते हैं उन सारी चीज़ों में. जी लिसनर्स, तो ये था आज का शो. हमारे साथ दो रिस्पेक्टेबल गेस्ट थी, मैम तैयबा राना एंड मैम शीबा सुल्तान. आई होप आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, एज अ प्रोफेशन आप इंग्लिश को किस तरह से परस्यू कर सकते हैं. मज़ीद इस तरह की और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जुड़े रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया. थैंक यू सो मच. अल्लाह
2: हाफिज़. खामोश भी हम हैं सुबह, हम हैं सबर, हम ही सजा, हम कातिब भी हम दास्तां.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

www.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

लाहौर्स नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया। लिसन, लर्न, डिस्कवर विद रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।
1: आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल पाकिस्तान में अपने अपने इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP की दुनिया.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ए सुरोरताल सुरोरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया
1: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP ki duniya.

0: एक नई सोच,
1: नई सोच,
2: एक नई पहचान,
0: एक नई लगन,
1: नई लगन।
2: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
2: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
2: UCP की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
2: सुनते रहिए।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

इस सुर और ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

आज लता नहीं हो, आज लता नहीं हो, आज लता नहीं हो।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 की दुनिया।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: टिकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।